செல்வி இல்ல போரிட்டி இத்தே போரிட்டி இத்தே அஃபோரிட்டி இத்தே இதியோக்திட்டி இத்தே நிக்கியாசுமένη η ζωή στην Κυψέλη είναι οργανωμένη. Μέσα σε κομμάτια καθρέφτες από φίλους, από μύθους, από δίσκους, από σεξ, από φίλους, από μύθους, από δίσκους.